हॉस्पिटल किचन बिना सुतिताग मजबूत हॉस्पिटल किचन में नंग इतने को बिना सोवे तो हो जाओ जित बिना सुतिताग बोलो नहीं तागो नहीं इन्हों हंगे मारो